चाइना से मैं कभी कभी होटल कर रहे चलो ये देर के कोई लाल वाल मंच नहीं है लेकिन बैठ रहे धीरे धीरे इस मंच पर सर मोबाइल साइड से पहले भी जरा कर रहे और हो गया देख देख लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल लाल

तुम यही को नसत रेडियो सारंग 107.8 एफएम ई रंग रंगाल जिनी आता मी ऐकूया कार्यक्रम आयतरसो संदेश मानादिक डोलपी सेरावो आता शिकोन दिता।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
1: आओ ना।